साई सवाल ने बकास काले गोया गागा मा आउना स्थाने न्यू गागा मा आउने आले जिन चुतु आई स्टेटस ऑफ 24 आश को ता तस बेगा या ता गेंगा मु तो मगरा जो रुजी तने 16000 हे खल्या ना दीजी ता आया स्टेटस ऑफ 24 आश नंबर 6 वाचन योगे से देखा मोजा तू टाकी का मोजा ने मको